कहूं महाराजन से छिन छेत ले तहु कहूं बेदरीत कहूं तस विपरीत कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो। ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दा अज एक होर स्वरूप क्योंकि अकाल पुरख दे कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं कीते जा सकते। कतों हुंदे सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा कतों अचेत होके सुत्ता पिया किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा कहूं महाराजियां नूं दान देंदा फिरदा ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजियां कोलों धरती खोह लैंदा किते ओ वेद दा रूप बन जांदा किते ओ तिन्ना गुणा दा रूप बन जांदा किते ओ सर्ब गुणा दा सपन्न वाहिगुरु मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा है। ओ अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेड़े जागदी रूप जागदी ज्योत है ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहिब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहिब विखे सुशोभित हन। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाणा जो महाराज साहिब जी दा असल अस्थान है उत्थे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि सारे संसार दे सांझे गुरु हन। सारे संसार दी बाणी सारे संसार दा भरम दूर कीता है गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सच दे नाल जोड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने ते सच दी आवाज नूं हमेशा बुलंद कीता है। इस दे विचों केवल सच ही सच लभेगा संसार दे पदार्थ मिले लभणगे बड़िया बड़िया वस्तुआं इस दे विचों लभणगियां साइंस इस दे विच है संसार दी फिलासफी इस दे विच है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर केवल नहीं था ते एक चीज नूं नहीं के गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर झूठ नूं था नहीं इस दे विच झूठ नहीं है। केवल संसार दी एक वस्तु नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ओ झूठ नहीं बाकी सब वस्तुआं संसार दीआं लभ लो इस दे विचों पवित्र स्वरूप है जागदी ज्योत है इस दे विचों जिहड़ी वस्तु लभोगे क्योंकि रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम बड़े बड़े पदार्थ ने लभण दी लोड़ है लब जाणगे मिल जाणगे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसा पावन गुरु है। आओ क्योंकि 8 बजे समाप्ति करके उस तों बाद आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है ते सेवा करनी है शुद्ध मन नाल ऐसे गुर को बल बल जाइए रसना दे उपर साडे ए पंक्ति होवे शीस उपर साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र सवारा होवे ते कहिए महाराज तू ते मुक्त है सानू मुक्त कर दे असी मैलां दे भरे होए हां पापी जीव हां सानू मुक्त कर सतगुरा तेरा पवित्र स्वरूप जिस दे शीस दे उपर आ जावे उस दे अंदर संसार दीआं मैलां रह जान महाराज तू मुक्ति दा दाता है आप मुक्त मोहे तारे मैनू तार लै संसार दे बंधना तो मुक्त कर दे पूर्ण श्रद्धा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है। हथ सुचे करके जोड़े ला के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदासा करके भई अज पवित्र गुरु दा संग हो रहा है पूर्ण गुरु दा संग हो रहा है किते महसूस करो किते यार दे दोस्त दे नाल जिंदगी बतीत करनी होवे ना किसे यार दोस्त दे नाल एक पल भी बतीत करन विच आ जाए बड़ा सुकून मिलदा है। अज गुरु दे नाल वेखिए भी ए सतसंग कीता होया किन्ना सफल हुंदा है किन्ना सुखदायक हुंदा है किन्ना रिलैक्स मिलदा है किन्नी साडी जिंदगी दे अंदर परिवर्तन आउंदा है। आओ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो बलिहार जांदे होए

एक कर्म छड़ के तू करोड़ा कर्म कर। भुखिया नु रोटी खुआ, जल छका, सेवा कर। पातशाह कहंदे ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसिया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।

पर बहुत पुरातन राग रहे ऐदावादी ऋषभ संवादी पंचम ने ओडव जाति का राग भाव एरदेन्द्र पंच सुरां लगदिया ने।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा माणा ने माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने कृपाण जन को प्रभु अपने कृपाण जो तू करे कर।

अपनी कृपा करे। चल कमल मन खड़ा दे किस दिन आम की पत्र मिश्र गत मरायण तन पाल साखी।

जब लवनी आग लीलार उठे तब लव भरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत्व विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और ने कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हलम कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बनाए अब गुरु की संगता की सेवा करनी है अपनी हत्ती पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु जी और संतान वास्ते आप चक्की थी आटा तैयार किया साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देव तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसी सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतान की सेवा करनी तुम भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सीधे उसे गागर जल्दी रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दस गुरु को यह जाना है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सास कहना नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की थी माता गंगा दे कन्ना विच प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

से प्यार दीजिए साहब, कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, दिल करे चातक की जाए, कृपा न उतरे सांस न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हमको लीजिए गोद घुमाई गुरु दर्शन। मैं गंगा जी कहता क्या एडे प्यार वाले तेरे सिख, हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन। अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही, साहब जी पहुंचे जथेदार बेनती की, जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संत वास्ते कड़ा प्रशादी दे। जथेदार जी उठ के बैठ गए, सारी संगत को सावधान किया, प्यारी सार संगत उठाओ, कोई गुरसिख आया है, गुरु ने उन्हें मन को प्रेरिया है, लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया, कड़ा प्रसाद जी दे जा रही है, उठो पहले अरदास करो। सिख में जो भी गुरु वालों दास मिलती है ना, पहला अरदास करो, ये अरदास करे तो गुरु की बख्शिश बन जाती, क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है, कार्य प्रसादा तैयार हो, अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए, क्योंकि अरदास क्यों हुई, कोई कार्य नहीं गुरु की, कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरु की, अच्छा तेरी चंगा कार मिले, जय प्रसाद मसा सुख मंदिर किसे पे आए, तो सारी संगत सावधान, जथेदार ने गलत पल्ला पाके अरदास की थी, ए धन गुरु नानक पातशाह तेरा

Yani her şey kurumsal mı? Aşağı bunlar geldi. बाबा जी वचन कर रहे सन भाई जी गुरु नु साख्यात समझोगे तो साख्यात ते नहीं समझोगे तो फिर कौन रब बैठा हुए तभी नहीं कुतरी का जिक्र है शिमले तो ऊपर है कुतरी पार्टीशन तो पहले भी है गल बाबा जी कुतरी महाराजा पटियाले का उस वेले उत्ते राय महाराजा यादविंदर सिंह जी थोड़ा ही समा आया चलाइंदर ने सिख कौम के बड़ी महान हस्ती सन उन्होंने माता जी राज माता उन्होंने बेनती की बाबा जी गर्मी है पंजाब दे आप उत्थे बख्शिश करो बेनती प्रवान होगी पहला तो बाबा जी कह लगे सानू लोहड़ी नहीं जिते गुरमत असी राजे महाराजिया को जा करना है तो राज माता ने गर्व पता पा के अरदास की बाबा जी और गुरु नानक पातशाह भी तो राजे शिवनाथ के घर गए तो कुफरी बाबा जी उनसे पूर्णवासी का समागम सत्संग रोज का प्रवाह चलता है नान सर और पूर्णवासी का खास मन उस वेले सेव लैलपुर रेलवे सन संत महाराज संत ज्ञान सिंह जी सारा जत्था कट्ठा तो ख्याल आया चलो मना चल के बाबिया के दर से हाजिरी पाइए पूर्णमाशी के समागम लैलपुर तो संतान लाहौर जलंधर लुधियाना दिल्ली देहरादून प्यार वाले संगी बाबा जी की संगत करने वाले पहुंच रात का विमान सजे शिमले तो तकरीबन काफी अठ नौ मील है शिमले बड़ा भारी दीवान सजे रात अमृत कीर्तन है अमृत वेले फिर की तो यही शब्द क्योंकि पूर्णमासी तो दूसरे दिन यह जरा शब्द है गुरमत हृदय गरीबी आवे हाँ किस कौल हुकुम आया गुरमंत्री देख रही हूं भी पढ़िया तो भाई साहब भाई संता सिंह जी रागी इतने होंगे सन बाबिया ने तेलू जिस तरह अच्कल भाई साहब भाई केर सिंह जी जिन्होंने सारी आज भी गुरु को बाहर नहीं जाते क्योंकि जिन्होंने मालिक के दर से ड्यूटी उन्होंने बाहर जाता टाइम ही नहीं है बहुत हाजिर नाजर गुरु नानक जान के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को प्यारी साधन एक मिनट नहीं पछ एक मिनट एक मिनट का जिक्र है सर्दी बड़ी सी एक रागी पछड़ गया दो तीन मिनट बाबा जी ने अमृत वेले ताड़ना की थी क्या प्यारे यार गुरु नानक ने तेरी उम्मीद कर ली है कि सिख ने गुरु नानक की उम्मीद एक न भर गया गुण कर धोवा सौ जागे हो निष्पर पवा यो क्यों कंत पे आ रही हो सौ जागे हो निष्पर गुरु नानक जागता पे है गुरु नानक उगता पे है टाइम नार पहुंचे गुरु के दर से हाजरी लग जाए गुरु की बख्शिश मिल जाए तीन मिनट कोई थोड़े होते तिना मिनटों में पता नहीं कितना पाड़ा पै जाता है पढ़ना तो भाई संता सिंह शौक पड़िया गुरुमत हृदय गरीबी है बड़ा हसया संगत ने चौंक के पड़िया इतना असर होया राज माता जी ने मन से संगत भी चोट के ते बार सार संगत दे अपने दुपट्टे नाल जोड़े चढ़ गए गुरुमत हृदय गरीबी इतनी निम्रता शब्द के अंदर सिद्धि शब्द को जो जो पढ़ोगे शब्द का मन से असर शब्द के अंदर गुरु है गुरु के शब्द ही फर्क नहीं शब्द ही गुरु का गुरु उन्होंने भोग पाया सेवका हुक्म होया शब्द पढ़ और जिस वेले बाजिया पे बैठे अमृत वेला सी तो शब्द शुरू किया कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हम किस पे आप बिताई दर्शन हर देखन की साई कृपा करे तो सतगुरु मेले हर हर नाम त्याई जे सुख देता तुझे आराधी दुख भी तुझे त्याई जे भुख देता ही तीरा जा दुख सुख मनाई
तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आग जलाई पखा फेरी पानी धुआं जो देवे तो इसलिए एक पंक्ति पड़ी समा बड़ा टिके बाबा जी विराजन लगा के दे राज लगा के जुड़ जाना अकाल पुरख विराजन रख दी कह लगे रागी सिंह जी की पढ़े है अच्छा पखा फेरी पानी ढोवा जो देवे सुख बाबा जी कह लगे कदे पखा फेरे आखो स्त्री कदे सात संगत वास्ते पानी ढोए एडा वड्डा सवाल इतनी एडा वड्डा क्वेश्चन हार के बेनती की बाबा जी असी तो पंक्तियां पढ़वाए बाबा जी कह लगे फिर तुम सानू उपदेश नहीं कर सकते ते अमल नहीं किया भाई जी सानू उपदेश नहीं कर बाजिया तो खा लाहौर तो संगत साढ़े प्यार वाले के ही आए मनु बड़ा बड़ी हैरानी हुई संगत में बाबा जी ने ताड़ना कर दी बाहर निकले तो सार संपूर्ण सिंगोरी होंगे संत जी से बड़े गुरु बड़ा मिठा जीवन बाहर आए हके कह लगे काबरो ना क्योंकि महापुरुषों की ताड़ना विच ही ताड़ना ताबरना नहीं चाहिए जे मास्टर टीचर किसी वेले स्टूडेंट बच्चे ताड़ना है उन्हें कोई वैधरूपता नहीं होंगी निराश बच्चे के भले वास्ते माता पिता जे किसी वेले बच्चे कुछ कह देते हैं तो उन्हें माता पिता का स्वार्थ नहीं होंगे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा हमेशा चढ़ी हतना च रहे कामयाब हो रहे ये किसी वे मां पुत को कह देती है पुत मर जा बाबा जी कहते सर पुत्र तू नहीं कहती ओदिया बुराइया कहती अंदरों तो असीसा देती है कि मेरा पुत जुगो जुगो तो महापुरुषों की ताड़ने बाबा नरसिंह सिंह जी महाराज ताड़ना बड़ी प्यार भी करते सर पर ताड़ बाबा जी कहते सर सारे महापुरुष चंगे रहे पर ताड़ना का पदार्थ तो शायद ही कदम पर ताड़ना भी तारना तो की करिए पूरे सिर कह लगे थोड़ा जि उपराला करो सोचे तो भी पक्षे की तो इतने लोड़ नहीं बड़ी ठंड सी ख्याल आया फिर पानी धोई तो पानी का जिसने ख्याल बनिया तो ना ही सोचा उतों तकरीबन अद्धा मील लेखा चश्मा सी जितों पानी उपर यही सोचा चलो मना महापुरुषों की प्रसन्नता ने तो संत महाराज संत सुजान सिंह जी सेव के उस्ताद सन भी साल की संगत उन्होंने बख्श कीर्तन थोड़े चो कई ने उन्होंने सुनिया होगा जो उन्होंने कीर्तन च आ जाता सी तो उठन की हिम्मत ही नहीं इन्हीं बख्शी पर बड़े बुरी सन सिर्फ संत ही नहीं सन नाले विद्वान भी सन क्लासिकल के बड़े माहिर बड़े बड़े मुसलमान उन्होंने मनते सन गवि तो उन्होंने पिता जी भाई साहब भाई ज्ञान सिंह जी जोड़ी वाला सिंह ते दास चार असी की कीता सिर के उत्ते टीम चुक लै जेड़े सतारा सतारा सेर के क्रस्तर हो चलो पानी भी तुर पै चश्मे से पहुंचे पानी भर लिया चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी चढ़ाई बड़ी जबरदस्ती शरीर पसीना पसीना पानी कपड़िया से डूबता जाए बड़ा सा आखिरकार जिस वेले उपर पहुंचे तो अगे बाबा जी नितनेम करके 10 बजे बाहर निकलते थे हाथ में सौटी चिट्टे दूर वर्गे वस्त्र पाए हुए चिट्टा दाड़ा मस्त से कोई दूर सी रबी टहल दूर वेख्या इशारा किया कोल गए जिस वेले तीन रखे पानी में नमस्कार की थी बाबा जी मुस्कुरा पाए कह लगे थक गए हो नहीं पाए कह लगे कोई नहीं चाहे एक टी भी पानी का लिया जो पंक्ति पढ़ जोगे तो बन गए ना तो यह कारण है इसकी बाबा जी बचन करते सन बाणी कह मात्र नहीं कमाई करके दुनिया में देख लो वो दस कह सत्संग सेव सिख पूजन सब आवे सब गावे हर उत्तम बाणी अद कहने गावे सुनिया हर दिल का थाए पावे जिन सतगुर की आ गया सत सत कमाई कर
अपना प्रत्येक कंज्यूमर बना के फिर कीर्तन। कई बार ये भी कह देंगे सर भी थोड़े भी कंजन की फर्क है, कई बार कह बाबा जी ने क्योंकि बख्शिश कर देता है, कह रहा थोड़े पिता की फर्क है, साल थोड़े को भी अनुना को शब्दों भी पढ़ लेंगे तुम भी पढ़ रात उन्होंने भी आते फर्क पाई दी है, ही है गुरमुखतार साते मन। ये गुरमुखता नहीं आई तो कोई सब तो गुरमुखता सीखनी है वो गुरु नाल दुखी अपना प्रैक्टिकल अच तक को ना धन गुरु अर्जुन देव पातशाह एवं पंक्तियां उचारिया नहीं धन गुरु रामदास पातशाह जी ने अब अमल पै करते हैं नाले पखा फेरते हैं नाले पढ़ते हैं पखा फेरी।

Sam Bandio. Deixa eu dar um pouquinho de pedra. Jorei a nera, mas não tem ninguém. Só quer me estar assim. A de pau, putini, Sérgio, cai lá que é Ganga Ji. Ji, Pátia, você está melhor, não já. Sai Ji, आप ही चलो अगर कल के थोड़ी सी सेवा बाकी रह गई है वो भी कर दो तो अनुप्रवर्तन दे बादशाह संगत विच नगदे नगदे नगदे जथेदार दे कोल आके खड़ो गए प्यार नाल कहया जथेदार जी गुरु किया संगता दे जोड़िया वास्ते सेवादार दी लोड़ है ना दास तक जथेदार सके कम गुरु के सिखा एक ही वचन की तेन जोड़िया ना सेवादार बिठाई नहीं नहीं तू अगे बड़ी सेवा की रात प्राप्त शादी देख चुका है ठंडा जल पिलाया सारी रात पक्का करता रहे तू तो कोई धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पूर्व सिख है प्यारे तेन इतने नहीं बिठाना तेन नाल लेके चलांगे ते गुरु अगे अरदास करांगे पातशाह पहली वेरी तेरे दर्शन करने वास्ते आया और कुछ नहीं मंगते जो कुछ सिख नूं दिता जे साडी कोली तेरे सबके तो साढ़े गुना बखे जाए कह लगी जथेदार जी मैनू इतने मजबूर किया तो प्यारी सास ने सारी संगत ने जोड़े उतार दिते संगत तो हरिमंदर साहब जा रही है ते जोड़िया का राखा कौन बैठा है प्यार नाल आखो पहनो संगत अंदर पहुंच साहब श्री मुकुंद साहब जी के दर्शन होए पर पंजे पातशाह के दर्शन बाबे बुढ़े ने पूछा बाबा जी पंजे पातशाह कितने हम दर्शन करिए बाबे ने किया साहब संगत जी पंजे पातशाह का रात दे पितली साहब गए थे श्री अमृतसर गुरुद्वारा पितली साहब जी ने सूची से पुतली घर के कोल गुरुद्वारा स्थान इतिहासिक जो साखी पुतली साहब पुतली घर के नाल पिपली साहब संगत ने कहा बाबा जी पिपली साहब असी रात पिपली साहब रहे सानू तो गुरु के दर्शन नहीं हुए क्योंकि संगत पहले ही दर्शन करवाते गुरु की सौ सुन के दर्शन बाबे बुद्धे देखे नहीं रात श्री हरिमंदर साहब पहुंच पे ग्यारह का टाइम साहब जी ने कहा कि बाबे यार गुरु दिया संगत दूर उतर के आई हर कुछ मिला तो उतारा किया गुरु की संगत भुखी देते मैं कहा पातशाह हुक्म करो जाके लंगर छका दें पर पंजे पातशाह मने नहीं कह लगे बाबे यार तू तो रोज गुरु की संगत की सेवा करना है अज इला सानू ले रात इतनी साथ एक दूजे के मुंह वाल वेख लगे जथेदार ने कहा बाबा जी पंजे पातशाह तो नहीं गए सिख जरूर गया हूं एक प्रसाद भी छकाया जल भी पिलाया पक्षा भी करता रे बाबा बुढ़ा जी कह लगे प्यारे हो सिख नहीं सी सिखा का मालिक बाबा जी किस तरह हो सकता है तो बाबे ने कहा पता हूं उसे कितने बड़े निराश एक दूजे के मुंह वाल तक उदासी भी जाके कह लगे बाबे हूं तो जोड़िया का राखा बिठा गया बाबे बुढ़े दिया पुपारी और कह रही साध संगत पंजे गुरुवार भी जोड़िया का राखा बिठा बाबा बुढ़ा जी भजे जाए मगर संगत भी भजी जाए पहुंच गए इधर मेरे पंजे पातशाह की कर रहे हैं एक जोड़ा चुक लेंगे उन्हों साफ कर लेंगे और धूड़ मथे दे किसी अगों भी खेड़े पढ़ते हैं

कर सिठा बेमुखा आपो बुरे जान कै सिठे लिख न सकन चित्रगुप्त सत समुंद समावन चिट्ठे चिट्ठी हूं तुम्हार लिख लख लख एक दो ठिठे कर कर संग हो रहे हैं होए मस्करा सवा सब ठिठे।

बेमुख मंदा चोर यार जो आ रहो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खो ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

फिर गुरु शरण साध संग लो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुरु सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो, चकवी बेयोग सोग पागहीन जानी है। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग, उल्लू अंध कंध प्रचीन उन्मानिए, सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है, त्रिखावंत चात्रक रहत बकवानिए, तैसे मिल साध सं सकल।

मयूरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त न पावरी।

सहज स्वभावरी अंग अंगहीन बिना तीन परची ना लग चरण शरण कैसे प्राप्त।

अनाथ नमो सर, तो सो न दानी न मोसो भिखारी, मोसो न दीन दयाल न तो सर, मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी, मोसो न पतित न पावन तो सर, मोसो बिकारी न तो सो उपकारी, मोरे हैं अवगुण।

दुर्योधन। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, मन बिरतियां नूं एकाग्र करे। भाई साहब लिखते हैं, फिटका होके बोलिया दुर्योधन, की प्यासी नौकरां दे घर। भाई साहब लिखते हैं,

राजा बोली थी, बोली जा रही, ठीक है भाई। हुण मैं बोला, भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या, हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन। तेरे घर विच सबो कुछ, सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं,

प्यार नहीं दिसदा। जे प्यार ना हुंदा ते सारी रात तुहाडा इंतजार ना करदे। भगवान आखन लगे हां होवेगा, पर जो प्यार बिदर कोल सी ना तेरे कोल नहीं राजन।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है।

0: अमृतसर सतगुर सतमती जित नाते कौआ हंस हो रे
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृतसर गुर अमृतसर न बढ़ाया सब जाते केल वेख पंग
1: सतगुर

सरवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासो शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

बिसर गई सब तात जब ते साधु संगत मोय रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगले